0: क्या तुम अपना गया दिन की आपने दिन के बारे में जान चाह तसो हो भोले आस ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन में
1: हमारा यहाँ वृंदावन बठे ज्योतिष विद्या पढ़ीबी आया ज्योतिष विद्या का बारे में बहुत ही जानकारी भैया बहुत ही वर्ष अगाड़ी बठे ज्योतिष विद्या का बारे में जानने देश रदेश में सम्मान ख्याति पाया ज्योतिष पंडित लक्ष्मण सुवेदी ने कंप्यूटर का मध्यम बठे चिन्ह चिठा बनाने रे चिठा भाग्य हेद्या घर बनाऊना की लेखा माटो हेद्या वास्तुशास्त्र का बारे में सब बताने पीर्ति को उद्धार गद्या रत्नले जन्तर बीज लाउने जन्म कुण्डलीमा भएको दोष ग्रहको शान्ति विशेष धार्मिक रे बौद्धिक विधिवठे गद्य
0: सम्पर्क की लेखाए ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदी ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन
1: फोन गद्दा की लेखा फोन नंबर 9845-39-76-58 रे 9814-27-36-01 तमु फोन बठेले आफ्नो भाग्य हेर्न सकन्छौ आज संगीतमय पुराण लगाउनक लेखालय सम्झन सकन्छौ
2: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ संस्कार र संस्कृतिको संवाहक सनातन रेडियो नेटवर्कमा कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण।